0: BFBS Gorkha Radio.
1: तपाईं लाई फोर्सेस डिस्काउंट्स को बारे में था सा था सही ना बने सुनी हाल होस यो विशेष करी फौजी सेवा में सेवारत सेवा निवृत्त एवं फौजी समुदाय का सदस्य और को लागी बने तैयार करिए को विशेष छूट को व्यवस्था हो यो संग 9000 भन्दा धेरै डिस्काउंट पार्टनर जोड़िए का सन जस मार्फत हामीले अनलाइन तथा हाई स्ट्रीट का दुकान का साथे थुप्रै रेस्टुरेंट देखि लिएर सिनेमा का टिकट सम्म में छूट पाउन सक्छ अनलाइन को लागि निशुल्क यो सेवा हाई स्ट्रीट को लागि भने 4.99 पेन्स तिरेर यसबाट धेरै फाइदा लिन सकिन्छ यसको लागि defensediscountservice.co.uk मा गएर आजै आफ्नो अकाउन्ट दर्ता गराइहाल्नुहोस् अनि थुप्रै छुटहरूको फाइदा उठाउनुहोस्।